0: Kali kana krida kasa na tire tos bari e jidare Bhajyai ho huna tapur bada nama ko jos dinu pyar thai sare Yesu hara dabu aja mero bhagavan keke nagarinu gare
1: मजिका धारा माई बड़ी कन रहेन ती माछे गन्दा पनि घुम्दै एक दिन दाई पर सररी से आए पुगे धन तारी देऊ मलाई बारी अहिले जान्छु भने थे जसाई

0: गोपी नी काली नी काकी ना थाई नी सारी चाई दोरी चाई लानी को
1: बना को देख चाई ना
2: रुमने ने तो मलम नो नो
0: करो हां भनकाना हाथ जोड़ी कर
3: एडा कुर्सी ने नाम
0: का गर दै थिए
2: हजुर हजुर
0: आ चतुर बाबू नारायण कदम का रुकाउ माथि चले र
2: हेरे फोन हेमस हेर
3: भौसी बना हरि
2: हरि
0: यो मुरली
2: हे

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

रे आवे मन की मैलन जाई रे नर मन की मैला न जाई रे हरि भजन बिना सुख नाई रे प्रभु

ज्योतिरमावे हृदय शांति न आई रे नर हृदय शांति न आई रे हरि भजन बिना सुख नहीं रे प्रभु भजन बिना सुख नहीं रे

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचारपछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नु होला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

ऋषिकेश, बद्रीनाथ, गंगा सागर कलकत्ता, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल बेलारू, कन्याकुमारी तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वारिका गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग साथ ही सब धाम क्षेत्र में रहकर प्रसिद्ध मंदिर दर्शन कराइने। यो यात्रा कई स्थान में बस टैक्सी बाहेक बाकी संपूर्ण यात्रा भारतीय रेल को विशिष्ट श्रेणी द्वारा कराइने। अन्य सेवा सुविधा लागत समय सम्पूर्ण जानकारी को लागी विष्णु अधिकारीलाई सम्झनु होला। सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीकोट दोलाखा।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलौं सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 20 तारिक आषाढ 6 गते शनिबार खष्टी तिथि आज कुमार खष्टी सिटीको दिन हो। अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हवस सद्वात कई काम राजा धर्म कुमार कैसरी हवस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हवस सुजन मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस् श्रुत सहित का